0: के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं।
1: समीन, आप हमारे निशात को शॉर्टवेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलोहर्ट्ज के अलावा तुर्कसर 3A ईस्ट और 4A वेस्ट समेत हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं।
0: आज हमारे प्रोग्राम में अलग तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिलेवार प्रोग्राम अहम इजादात और सैर व सियाहत पेश किए जाएंगे।
1: हमारा प्रोग्राम हसब मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपकी मेज़बान है मिसबा शाह
0: सवीर अहमद
1: और स्टूडियो में हमारे साथ तकनीकी तआवुन कर रही हैं उसके खुराए।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: ईरान ने कहा है कि अमरीका एकतरफा पाबंदियों से होने वाले नुकसान का बैन अल-अक़वामी सतह पर जिम्मेदार है और इसे मुआवजे और बहाली समेत ईरान को पहुंचाए गए नुकसान का मुकम्मल अजाला करना चाहिए। अक़वामे मुत्तहिदा और अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को अरसाल करदा मरासले में ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची ने अमरीका के इकदाम को एकतरफा जबरी इकदाम के जरिए चलाई जाने वाली इकतसादी दहशतगर्दी मुहिम करार दिया और कहा है कि ये इकदाम बैन अल-अक़वामी कानून के मुनाफी हैं। ईरान सरकारी टेलीविजन IRIP के मुताबिक इराकची ने कहा है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान जिम्मेदारों का एहतसाब यकीनी बनाने, नुकसान का मुआवजा और अजाला कराने और इन गैर इंसानी और गैर कानूनी इकदाम के जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराने के लिए तमाम दस्तियाब जराये इस्तेमाल करने का हक महफूज रखता है। इराकची ने जोर दिया है कि अमरीका की जानब से चलाई गई ये मुहिम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत तमाम मादी और गैर मादी नुकसान के मुआवजे और अजाले को यकीन बनाने की जिम्मेदारी समेत बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी पैदा करती है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर ईरान के अवाम को गैर कानूनी और मुजरमाना इकदाम के जरिए पहुंचने वाले नुकसान के नतज से मुतलिक जरूरी कानूनी अनासर साबित हो जाते हैं तो अमरीका मुकम्मल बैन अल-अक़वामी जिम्मेदारी का हामिल होगा और इसे इनफरादी ताजीराती जिम्मेदारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। अराकची ने अक़वाम-ए-मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और रुकन ममालिक से मुतालबा किया है कि वो वाशिंगटन की जानिब से खुद मुख्तार रियासतों पर इनके जायज़ इक़्तिसादी मफादात और तजारती ताल्लुकात तब्दील करने के लिए यकतरफा जबरी इकदाम और सानवी पाबंदियों के इस्तेमाल की मजम्मत करे और इसे मुस्तरद करे। ईरान ने ममालिक से यह भी मुतालबा किया है कि वो ऐसे इकदाम को तस्लीम मंजूर या नाफस न करें जिनका मकसद इनके खुद मुख्तार हकूक को वाशिंगटन की जानब से यकतरफा तौर पर तय करदा पॉलिसियों से मशरूत करना है।
2: अमरीकी NBC न्यूज़ ने मामले से मुतालिक चार जराये के हवाले से खबर में कहा है कि ईरान के मिज़ाइल और ड्रोन हमलों ने पूरे मशरक़ वस्ती में अमरीकी इंटेलिजेंस तंसीबात और इंटेलिजेंस आलात को अरबों डॉलर का बेमिसाल नुकसान पहुँचाया है। खबर के मुताबिक इन हमलों

हम इन मादनी पानियों का इंसानी ज़िंदगी में बतौर मशरूब मुतारिफ होना एक चर्च के पादरी के काम का इत्तफाकी नतीजा है, जो कीमिया गरी में दिलचस्पी रखता था और एक डॉक्टर जो पेट की बीमारी में मुबतला अपने मरीजों का इलाज करना चाहता था। मादनी पानी या सोडा में मौजूद अनासर, जैसा कि यह जाना जाता है, आम तौर पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम बाइकार्बोनेट और क्लोरीन होते हैं। ये अनासर बदहजमी और सीने की जलन जैसे आवारिस को बराह रास्त मुतासर करते हैं और हमारे जिस्म को दरकार मादनियात की कमी को दूर करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव के तहत सिर ज़मीन ज़राए से सतह पर आने वाले शिफा बख्श पानी इन अनासर को इन तहों में तहलील करते हैं जिनसे वो गुजरते हैं और इंसानों की खिदमत के लिए सामने आते हैं। क़रून वुस्ता के बाद यूरोप के बहुत से ममालिक में बढ़ती हुई आबादी के साथ बुनियादी ढांचे की कमी ने पीने के साफ पानी तक रसाई को शहर में रहने वाले लोगों के बड़े हिस्से के लिए एक संगीन मसला बना दिया था। ख़ास तौर पर 18वीं सदी में हैज़ा और टाइफाइड जैसी वबाई बीमारियां जो पीने के गंदे पानी की वजह से यूरोपीय बर आज़म में फूट पड़ी, जिनका हल इंसानी तहजीब को निकालना था। इस अरसे के दौरान गैर आलूदा और काबिल एतमाद कुदरती मादनी पानी तवज्जो का मरकज़ बन गए और इन पानियों की शिफा बख्श खसूसियात बढ़ती हुई तवज्जो मबजूल करने लगी। ताहम ज़ेर ज़मीन पानी के महदूद वसाइल मुसलसल बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने से कासिर थे और इस मसले के हल ने कीमिया से मुंसलिक साइंसदानों के जहनों पर और भी कब्जा कर लिया। पहला मारूफ मस्नूई मादनी पानी 1741 में बरतानवी डॉक्टर विलियम ब्राउन रेग ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को नलके के पानी में मिलाकर हासिल किया था। यह बोतल का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के असर से ढक्कन खोलने पर फूल जाता था और पीने पर मेदे में हल्का सा आराम पहुंचाता था, लेकिन बरतानवी डॉक्टर की यह दरियाफ्त ज़्यादा तवज्जो ना मबजूल कर सकी क्योंकि उसने नल का गंदा पानी इस्तेमाल किया था। इन्हीं सालों में बरतानवी कीमियादान जोसेफ प्रेसले, जो कीमिया के शोबे में काम कर रहे थे और इस मकाले को साबित करने की कोशिश में थे कि हम जिस हवा में सांस लेते हैं वो मुख्तलिफ गैसों का मुरक्कब है, अपने साइंसी तजुर्बात के लिए अपने घर के करीब एक शराब खाने में वो ठहरे। एलन प्रेसले अक्सर शराब खानों में जाते थे। उन्होंने बियर के उबाल के अमल के दौरान खारिज होने वाली गैसों को इकट्ठा करके तजुर्बा किया। इत्तफाक से दरियाफ्त किया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में तहलील हो सकती है। प्रेसले, जिन्होंने यॉर्कशायर शहर के चर्च में एक पादरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी और अपने अकायद की वजह से अल्कोहल वाले मशरूबात से वो दूर रहते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक खुशगवार, जायकेदार और जरासीम से पाक मशरूब बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहा। बीमार होने पर प्रेसले ने पहले नल के पानी को उबाल कर जरासीम से पाक किया, बोतल में भरे हुए पानी में कुछ मादनियात शामिल किए और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इंजेक्शन लगाया। नतीजा एक चमकता हुआ मशरूब था जिसे आज हम सोडा या मस्नूई मिनरल वाटर कहते हैं। प्रेसले की यह दरियाफ्त ने सबसे पहले इसी शहर के मजहबी लोगों में बहुत तवज्जो मबजूल करवाई जहां वो रहता था और वक्त के साथ साथ ये पूरे मुल्क में फैल गई। एक शौकिया जर्मन कीमियादान जैकब श्वेब था जिसने मस्नूई मिनरल वाटर बनाया जो ज़्यादा खाने के बाद हमारा पहला जरिया था। यह दरियाफ्त यूरोप में फैल गई। श्वेब का बुनियादी मकसद एक ऐसी माया दवा तलाश करना था जिससे मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सके। श्वेब ने सबसे पहले प्रेसले के तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए मस्नूई मिनरल वाटर बनाया और फिर चीनी और क्विनिन मिलाकर टॉनिक हासिल करने में कामयाब हो गए। जर्मन कीमियादान श्वेब की कुनियत से कायम होने वाली कंपनी कई सालों से मस्नूई मिनरल वाटर और टॉनिक दोनों की तैयारी में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।